0: भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की
1: जय।
0: कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। कामिका एकादशी की पवित्र एकादशी के नाम से जानी जाती है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री

भक्तों, कहते हैं खुशी हो या गम, ज्यादा दिन तक कोई भी नहीं टिकता। उस गांव के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक ब्राह्मण से एक ठाकुर की कहा सुनी हो गई, बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। ठाकुर साहब दबंग किस्म के ठाकुर थे, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और ठाकुर साहब के हाथों ब्राह्मण के मृत्यु हो जाती है। सुनिए आगे क्या होता है।

भक्तों, जब तेरवी की बात गांव में फैलती है तो सारे गांव वाले एकजुट हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि हम उस महापापी ठाकुर के घर का पानी भी नहीं पिएंगे जिसके सिर पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा हुआ है। गांव वालों का ऐसा फैसला सुनके ठाकुर मन में बड़ा दुखी होता है। आइए आगे क्या होता है कथा के माध्यम से समझते हैं।

भक्तों, ठाकुर गांव में हर घर जाकर हाथ जोड़ता, माफी मांगता, सबके आगे नाक रगड़ता, अपनी मुक्ति का उपाय पूछता, अपनी करनी का उसको बड़ा पछतावा हो रहा था। आइए आगे क्या होता है कथा के माध्यम से जानते हैं।

पवित्रा एकादशी का व्रत करने से ब्राह्मण हत्या का दोष भी उतर जाता है। वो ठाकुर सावन माह में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है। उसे रात श्री हरि उसके सपने में आके कहते हैं। आगे क्या होता है आइए कथा के माध्यम से जानते हैं।

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। प्रत्येक मंगलबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सर्व मांगलिक कामना का साथ में कार्यक्रम सर्व मंगलम सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभावहरूले 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेकबुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
2: टुगेदर वी डेलिभर।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की
1: जय।
0: कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। कामिका एकादशी की पवित्र एकादशी के नाम से जानी जाती है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए।

भक्तों, कहते हैं खुशी हो या गम, ज्यादा दिन तक कोई भी नहीं टिकता। उस गांव के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक ब्राह्मण से एक ठाकुर की कहा सुनी हो गई, बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। ठाकुर साहब दबंग किस्म के ठाकुर थे, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और ठाकुर साहब के हाथों ब्राह्मण के मृत्यु हो जाती है। सुनिए आगे क्या होता है।

भक्तों, जब तेरवी की बात गांव में फैलती है तो सारे गांव वाले एकजुट हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि हम उस महापापी ठाकुर के घर का पानी भी नहीं पिएंगे जिसके सिर पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा हुआ है। गांव वालों का ऐसा फैसला सुन के ठाकुर मन में बड़ा दुखी होता है। आइए आगे क्या होता है कथा के माध्यम से समझते हैं।

ठाकुर गांव में हर घर जाकर हाथ जोड़ता, माफी मांगता, सबके आगे नाक रगड़ता, अपनी मुक्ति का उपाय पूछता, अपनी करनी का उसको बड़ा पछतावा हो रहा था। आइए आगे क्या होता है कथा के माध्यम से जानते हैं।

भक्तजनों, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। गांव के श्रेष्ठ जन ठाकुर को कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह देते हैं। कामिका एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। पवित्रा एकादशी का व्रत करने से ब्राह्मण हत्या का दोष भी उतर जाता है। वो ठाकुर सावन माह में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है। उसे रात श्री हरि उसके सपने में आके कहते हैं। आगे क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फुड्स प्रालीद्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र सन्तुष्टिको लागि
2: सिल्वर प्यालेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामानहरू को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं पिउखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनि सूट
4: अनि मलाई

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुगुरुल्ला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुगुरुल्ला अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामानहरूको लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामानमा 100% शुद्धताको ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नम्बर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा। FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: साबेल चुच्चे पाटी
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: प्रति दिन SMS अलर्ट सुविधा, निःशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
1: टुगेदर वी डेलिभर।
0: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: बोली तेरा तो फिल्म यार्दा खेरी बोली मानो ना
1: मिति गंगबुदी मंगसी

तू सोच ले हम सोचने का मौका भी देंगे, तू प्यार से तंग आएगी प्यार इतना करेंगे। तो सोच ले हम

0: 104.8 मेगाहर्ज मा अहिले मनोरञ्जन दिदै हुनुहुन्छ हिन्दी फिल्मी गीतहरुबाट।
1: मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं, गोरे को मैं कहूं काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो बोलना नहीं, मुझे समझाना मत झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही।

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयो बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ दोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। बोले वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। शिखराज महाराज की जय। श्री हृदयवंश महाप्रभु जी की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। भगवत देव रसिक जी।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: सबैको मंगलम। अब घर घरमा मंगलम, सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम।
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल, मंगलम सोनम चामल, मंगलम सोना स्टीम चामल, स्वाद र संतुष्टि को लागि।

कंठ में आ गए। मानो मणि के बिना सांप व्याकुल अर्थात मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौसल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर से आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौसल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा होगा।

धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहां है, लक्ष्मण कहां है, स्नेही राम कहां है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहां है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी अर्थात श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, लक्ष्मण, हा रघुवीर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुर लो।

जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकई को गालियां देते हैं जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया।

0: वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा,
1: तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है।
0: मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशुकन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे ताकि अनिष्ट शांति हो। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े।

समान वेग वाले घोड़ों को हांकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेश वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशुकन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी विपत्ति हार बैठे हैं। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से अर्थात चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है।

बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते। मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। वो आरती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन में उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो हैं? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहां हैं? मेरी सब माताएं कहां हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहां हैं? पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली।

तात, मैंने सारी बात मना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो ये कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया। वे तात तात हाता पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाच कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी।

0: श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय के इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा,
1: पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने मुझे जन्मते ही मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता।

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: तपाईं अहिले सुनिरहनु भएको छ FM अध्यात्म ज्योति
3: अरे कुमती जब तूने हृदय में ये बुरा विचार ठाना उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई तेरी जीभ गल नहीं गई तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी स्त्रियों के हृदय की चाल विधाता भी नहीं जान सके वह संपूर्ण कपट और अवगुणों की खान है फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए तू कौन है मुझे सच सच कह तू जो है सो है अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं

माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुख से खून बहने लगा। वो करहाती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूठा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सुंदर की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो।

भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहां हैं, उन्हें दिखा दे। मां सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहां हैं, उन्हें दिखा दे। कैकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जीवन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। धिक्कार है मुझे, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी।

सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौसल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं भलैया लेती हूं, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिंदा रख रहा है। अब भी कौन जानता है कि उसे क्या बहा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष।

उनका मुख प्रसन्न था। मन में न आसक्ति थी न द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौसल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया।